0: सब कोए, सुध क्यों कर किए सुध पर सोए, नानक सुध के ना उतरे ज्ञान उतरे।
1: मन का सुतक लोभ है जेवा सुतक।

पौड़ी सब को आखी अपना जिसनाई सोचन कढ़ी है किता पो अपना पहले खा संडी है जा रहना नहीं है जगदा कायत गार भंडी है मंदा किसने आखिए पड़ख रहे बूझी है मूर्खे नाल ना लूझी है मूर्खे नाल।

पौड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही तय तारी है देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है को साहे मन में सारी है अपना थी अपना आपे ही काज सवारी है।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी चले खसमे पाए हुरमत सुनो अगलियो वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंत्र पाए वजो गवाए अगला मोह में पाना खाए जिस दत्ता खावना तिस कही ऐसा बास नानक हुक्म चले नाल खसम चले अरदास।

पौड़ी नानक अंत न जपनी हरता के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार इकना गली जंजीरियां कुली चरे बसियार आप कराए करे आप हों कैसे हों करी पुकार नानक करना जिनकी यार।

बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत पर कियह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत।

शरण परे की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमारी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमारे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संघरियै। पूरन होय हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहौ सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारी पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद्ध कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनाद असंभ।

नत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत पुज खान बहुरे रच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगर हो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित होय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताकि काल निकट नह है रक्षा होय ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहिब आते होर।

हम अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत साढ़ बिख बिख माया मोह परम पै भूले, सुत दारस्यों एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास, राखो शरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास, राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेविया अहन सुसहज, दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख, होवै सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह, तुदृठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी, सजण सच्चा पातशाह सिर साहंद, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा, सजना सच्चा पातशाह सिर साहंद, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसा। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, जब जरिया तब होए भस्म ताना, रह कर्म दल खाई, काचे गागर नीर परत है, या तन की यह बड़ाई, जब जरिया तब हुए भस्म ताना, रह कर्म दल खाई, काची गागर नीर परत है, या तन की यह बड़ाई, काहे भैया फिरता फूलिया फूलिया, जब दस मास उर्दमुख रहता सो दिन कैसे भूलिया, रहा ज्यों मधमाखी त्यों सठोर रासा, जोर जोर धन किया मरती बार, लेहो लेहो करिया भूत रहन क्यों दिया, देहरी लौ बरी नार संग पई, आगा सजन सुहेला मर कट लो सब लोग कुटुंब भयो, आगा हंस अकेला
कहत कबीरा सुनहु रे प्राणी परे काल ग्रास कुआ झूठी माया आप बंधाया ज्यों नलनी भ्राम सुआ। कहत कबीर सुनहु रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया आप बंधाया ज्यों नलनी भ्राम सुआ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्तकाया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर सर्व रखिया गुरदयाल भय दुख विनाशन भगत वछलनाथ नाथी शरण नानक पुरख चित्त है। बिलावल महला पंजवा ताती बावन लगई पार ब्रह्म सरनाई चौगर्द हमारा राम कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जनमनत बनाई राम नाम कदिया कल बुलाई राव राख लिए तिन रखनहार सब याद मिटाई। कहो नानक कृपा भई प्रा भई सहाय सोहेला रा गौड़ी देवकी महला पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिया करते का होय बिचारो तुतकर गाव सोहेला सिबरहो सृजनहारो तुम गाव हो मेरे निरभउ का सोहेला हो बारी जित सोहेला सदा सुखोय राव नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाना कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन असीसड़िया ज्यों होवे साहिब स्यो मेल घर घर हो पाहु चा सदड़े नित पवन सदनहारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आस महला पहला शै घर शै गुर शै उपदेश गुर गुर को बेस अनेक बाबा जयकर करते कीर्त होए सुख राख बढ़ाई तोय रहाव बिसुए चसिया घड़िया पहरा थिती बारी माह होआ सूरज को रुत अनेक नानक करते के किते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मले आनलो पवन चबरो करे सगल बन राई फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द बजंत भेरी रहाव सहस्तव नैन नन नैन है तोहे काओ सहस मूरत ननैक तोही सहस पद बिमल ननेक पद गंध बिन सहस्तव गंध इवचल तमोही सम जोत जोत है सोई तिसदा चानण सम चानण होई गुरसाखी जोत प्रगट होई ज्योतिस भावै सो आरती होई हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहि आहि प्यासा कृपा जल्द हे नानक सारिंग का होए जाते तेरा नाई वासा और राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा
काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा ही पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा ही कर साधु अंजलि पन वड्डा ही कर डुंडौत पन वड्डा ही रहाव साकत हर साधना जानिया तिरंतर होमै कंडा ही ज्यों ज्यों चलहि चुभै दुख पावहि जम काल सहहि सिर डंडा ही हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडा ही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बह सोभ खंड ब्रह्मंडा ही हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डा ही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा ही हरा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चल होर लाह अगै बसन सुहेला औद कटै दिन सुरैना रे मन गुर मिल का सवारे रहाओ इहो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पियावै हो रस कथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हर गुर ते मनहि बसेरा निज कर महल पाव सुख सहजे बहर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते।

मुख कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगा मुख कर संतन की तूरे

बौद्ध दर्शन ने हाथ मिलाया, अग्गे करे कीर्त वाजिए पहले का कर समझाया, नाव नाव विमोचन सुनिए क्या नुआया।

संतोख सरोवर बसे अमे रस रसन प्रकाशे मिलत शांत उपजे तुरत दुरंत नाशे सुख सागर पायो तेंत हर मगन हुटे संजम सत संतोख सील स्नह मुफुटे सतगुर प्रमान विदने सरयो जग जस तुर बजायो गुरु रामदास कल उचरे ते अपे अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमान मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनित नाम निदान रिद सिद्ध ताके दासे सह सरोवर मिलो पुरख पेट्यो अविनाशी आदले पवत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुरु रामदास कल उचरे ते

0: सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो।
1: तेज सदा सहचावान संतोख सराय चो सदा सील सुना हो सो है गुरु।

भगत परवा प्रेत पुबली ना हुट सतगुर शब्द यथा अमित तारा सुकुट मत माता संतोख पिता सर सह समायो आयुनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो अब गात अगोचरे अपर पर मन गुर

अभगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो। गुरु रामदास कल उच्चर तै जगत उदारन पा।

है। जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जच शब्द सार एक दिवलाई है। उन जाने को तेरा अपार निरपो निरंकार कत कतन हार तुझे बुझाई है। परम पुले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना डंड काल गुरमत त्याई है। मन प्राणी मुगद विचार एह निस जाप

होर मर जम्मै आवै जाई, एहो शरीर जजरी है, इस नौ जर पहुँचै आई। गोरे राखे से उबरे, होर मर जम्मै आवै जाई। होर मर जम्मह आवह जावह, अंत गए पशुतावह। बिन नावै सुख न होई, ऐथ कमावै सो फल पावै। मन मुख है पत खोई।

सच्चरे नामे समाई सच्चे नाम समाई हर गुण गाई मिल प्रीतम सुख पाई सदा आनंद रहै दिन राती विच हो मैं जाई जिनी पुरखी हर नाम चित लाया तिन कै हौ लागौ पाई काया कंचन ता थीऐ जा सतगुर लै मिलाई सो सच्चा सच सलाहीऐ जे सतगुर दे बुझाए बिन सतगुर भरम भुलाणिया क्या मोह देसन आगै जाए क्या दीन मोह जाए अवगुण पछुताए दुखो दुख कमाए नाम रतिया से रंग चलूला पिर कै अंक समाए तिस जीवड अवर न सूझई किस आगै कहिऐ जाए सो सच्चा सच सलाहीऐ जे सतगुर दे बुझाए जिनी सचड़ा सच सलाहिया हौ तिन लागौ पाए से जान सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाए तिन मिलिया मल सब जाए सच्चै सर नाए सच्चै सहज सुभाए नाम निरंजन अगम अगोचर